0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: நேரம் 1:57:57 ஆயிட்டு இருக்கு. ஹாய் ஸ்நேகிதி, மகளிர் உங்கள் சாய்ஸோட நிறைவாக வரும் பாடலுடன் நானும் கிளம்ப வேண்டிய நேரமும் வந்தாச்சு. இதோட நானும் விடைபெறேன். உங்களை இன்னொரு ஷோல சந்திக்கும் வரை அண்டல் தன் பாய் ஃப்ரம் அந்த்வான்.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: காலத்து வந்த காலங்கள் நிகழ்ச்சியுடன் நிறைவு தருணத்துக்கு வந்தாச்சு. நிலையத்து நேரம் பாத்தீங்கன்னா 2:54 நிறைவாக வரக்கூடிய சாங் உங்களுடைய FM ரெயின் போல சிவந்தமன் திரைப்படத்துல வந்து